प्रभु की करो संत मीत सावधान का गुरजीत सुख मुनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे।